याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाद्य अनन्तो दिव्येनि मोक्षाम्पन्न मातावन कन्यमरियतुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसु मनव। මේ කී දේ අපගේ ස්වාමී වූ ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ආමෙන්.

हालेलुया। एविट जीव मान सत्वयान सतर देना गायना करबिन सिटियाउद सिडिन्नाउद मतु सिडिन्नाउद एकम जीव मान देवियान वहांसेट सियलु कौरवे वेवाई कियन एविट वेडी महल्लो विसी हतर देना तुन्वन स्वर्गे सियोन ही वहांसेगे सिंहासन इदिरिये सिडिन वैदि महालन विज्ञातर देना स्वकीय किरुलु बीमादामा देवी अनमार सिद्धिये वैंदे बैठे पिन ओब सदा काले सदा काले टे गाऊरवे लवान टे सुदु सुदेवी अनमार सिद्धि

याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाद्य अनन्तो दिव्येनि मोक्षाम्पन्न मातावन कान्यमार्यतुमान्गे गतः प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतुयुक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मे की दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।